मुझसा कोई बदकार न होगा, कौन सी मैंने की न बुराई। ओ माय बिलव्ड अल्लाह, आई एम द वर्स्ट इन योर क्रिएशन। वी मस्ट कंसिडर अवरसेल्व्स द वर्स्ट। मुझसा कोई बदकार न होगा, देयर इज नो वन मोर सिनफुल देन आई। Which sin is there, my Allah, which I have not committed? From the time we became of age up till now, look at our lives.

हुस्न में तुझसा सारे जहां में नहीं, फजल में तेरा हम सर जमा में नहीं, हो किसी में कहां तुझसा हुस्न कलाम, अलैकस्सलातु अलैकस्सलाम। Who in the world can be more handsome and more beautiful than you, O Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Who can be greater than you in fazl and kamal, O Nabi Allah? And who can have more sweetness and more beauty in the speech than you, Ya Rasulullah sallallahu alayka salatu alayka salam. Husn mein tujhsa saare jahan mein nahi, fazl mein tera hum sar zaman mein nahi, ho kisi mein kahan tujhsa husn e kalam, alayka salatu alayka salam. عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام.

अब जैसे भी है तेरे बंदे है, तुझे छोड़ के हम गंदे जाए कहां। डोंट डिप्राइव अस ऑफ द शफात ऑफ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिकॉज ऑफ आवर एक्शंस आवर डीड्स, हमारी खबासत, हमारी नजासत, हमारी गिलाजत की वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात से महरूम मत फरमा। विद मुबारक हैंड्स ऑफ रहमतुल आलमीन, विद मुबारक हैंड्स ऑफ रहमतुल आलमीन, ब्लेस अस विद जामे कौसर। After which there will be no thirst on the day of Qiyamah. Without any reckoning enters into Jannat. Cross us over Pul Sirat like lightning. Protect us from the azab of Qabr, azab of Hashar. Bless us with your Didar in Jannat. Jannat, my beloved Allah, bless us with sight on your countenance. When the veils will be removed, when the veils of Noor will be removed. Ya Rabbi Kareem, make us amongst those who will be able to see you like how we see the full moon in this world.

दुनिया से इस तरह हो रुखसत गुलाम तेरा, हो दिल में याद तेरी हो लब पे नाम तेरा। वरमा सिवा से गाफिल शौक़े लिक़ा में तेरे,